0: वाह भाई वाह। ओके जी 6122 हेलो।
1: चलो हाँ जी भाई।
0: हाँ जी वीरे किदा?
1: हाँ जी बहुत वधिया भाई, बहुत वधिया। वर्कआउट करन चलदे सीगे इत्थे।
0: किथे चले हो वर्कआउट करन?
1: हाँ जी
0: हाँ
1: जी।
0: क्या बात है, थोड़ा तो नहीं दिल टूटिया भी हुण मसल मुसल बना लिए?
1: दूसरा ऑन टॉपिक मेरे ख्याल भुलना नहीं चाहिए, भुल भी नहीं सकते जिन्ना भुलन की कोशिश करोगे चीज याद आऊगी।
0: अच्छा
1: तो तुसी उसनू कैरी ओवर ही रखो।
0: कोशिश ना करो, पर जे हुण अरनो थोड़ा बंदा लूप होल जे च फिर पिया रहिंदा जे नहीं भुलदा। ठीक है, सो भुलण दी कोशिश ना करो, जिहड़ियां गलतियां होईयां या जो कमियां सीगियां उहनां नूं याद रखो जरूर।
1: रखो जरूर,
0: हां जी। चलो थोड़ा दिल टुट्टिया कदे वैसे?
1: मेरा हां जी नॉट डैड वे, पर मैं हां जी कोई प्रोफेशनल एग्जाम दी तैयारी कर रहा सीगा। आई डिड माय बेस्ट, पर मेरे तो नहीं क्रैक होया।
0: ओके
1: आई स्टिल रिमेंबर कि नहीं होया। चलो इट्स ओके, दैट पार्ट ऑफ अ लाइफ।
0: तुसी फिर किवें मूव ऑन कीता?
1: जरूर
0: लो। चलो जरूर ज्वाइन करो यार, बहुत वधिया जिम है, बड़ी कमाल दी वाइब है, ते ज्वाइन करो, वर्कआउट देखियो लगदे फिर।
1: केडी लोकेशन है, केडी जगह?
0: ए ब्रदर अपना मेफील्ड एंड 410 दे कोले आ।
1: ओके,
0: सो मेफील्ड 410 ते कनाडा दी सब तो वड्डी जिम है।
1: ओके,
0: तुहानू कदे भी किसी मशीन दी वेट नहीं करनी पैंदी। ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਏ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਸਕੁਆਟ ਰੈਕ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਵਾਈਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਲੇ।
1: ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਆ ਨਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਫੁੱਲ ਆ ਤੇ ਮਸਾ ਮੈਂ
0: ਪਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟਾਂ ਚ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਰਨ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੂਰ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਓ।
1: राजधानी
0: राजधानी राजधानी हो पी है भाई।

0: हाँ विवा, क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया।
1: हग ही अमल ने जो हथ लाया भी दुख देने दे तो

0: हाँ हाँ एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड एंड अप्रोचेबल ब्रोकर ऑफ रिकॉर्ड, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, लीड जनरेशन सिस्टम, पैसिव इनकम प्रोग्राम फॉर रियल्टर्स, फ्री एडमिन सपोर्ट, हायरिंग फुल टाइम एंड पार्ट टाइम रियल्टर्स। कॉल 416-823-9505 और विजिट summitrealtyexperts.com। समिट रियल्टी एक्सपर्ट।
1: ओके, अज ना अखीरला दिन है सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का जो मैसेज सीगा, ते मैसेज ये है कि नेशनल यूथ वीक चल रहा, ते आज नेशनल यूथ वीक का अखीरला दिन है, ते पहली मई तो लैके अज तक चल रहा। फ्री यूथ फोकस्ड इवेंट्स अपने शहर च हो रहे ने, जे 14 साल तो लैके 29 साल तक की उम्र है तो तुसी इन्हां इवेंट्स दे विच शामिल हो सकते हो। उस दे नाल नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਰ ਦੇ ਲਈ, ਐਂਡ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਰੈਕਰੀਏਸ਼ਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। brampton.ca/youth ਗਾਣਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੈਡ, ਬਟ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਣ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਰੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬੋਲ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਬੋਲ ਲਾ ਦਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਨਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-673-3337। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ